0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेवक किससे डरे
0: जैसा सात ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया।

0: जे किया जाने
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया
0: सुख बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाखे
1: सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे
0: जन्म जन्म का टूटा गांडे
1: गुर पूरे तत एह बुझाया
0: प्रभु अपना नानक जानते आया
1: साजन संत करो यो काम सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आज जपो अबरा नाम जपावो
1: भगत।

0: जय निर्मल पुरख पुरख पते होता
1: तै बिन मैल कौन कै तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तै कौन कौन मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तै शल शीतल लक्त को कीस
0: जय जोत रूपी जोत संग समावे
1: तै किसे पू कवन तिरतावे
0: करण करावण करने हार
1: नानक करते का नाही सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माई बाप मित्र सुध पाई
0: जय

0: एक टेक रखो मन माहे,
1: नानक बवर न आवे जाए,
0: तिसते दूर कहां को जाए,
1: उपरे राखन हार ते आए,
0: निरपो जपे सगल पो मिटे,
1: प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे,
0: जिस प्रभु राखे तिस नाही दोख,
1: नाम जपत मन होवत सुख,
0: चिंता जाए मिटे हंकार,
1: तिस जन को कोई न पंचन हार,
0: सिर ओपर ठाडा गुरसूरा,
1: नानक ताके कार्ज
0: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट,
1: दर्शन पेखत उतरे श्रेष्ठ,
0: चरण कमल जाके अनूप,
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
0: तन सेवा सेवक परवान,
1: अंतर जामी पुर प्रदान,
0: जिस मन बसे सो हो।

0: सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण खराब नहार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बार भी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: तिस भाव ते सगली उत्पत
1: तिस भावे ता करे विस्तार
0: तिस भावे ता एकंकार
1: अनकला लखी ना जाए
0: जिस भावे तिस लय मलाए
1: पवन निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगत जिसे आप जना
0: आप
1: सर्वभूत आप वरतारा
0: सर्व नैन आपेखन हारा
1: सगल समग्री जानका तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कै मादल

0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाले रतन
0: सुनत कमावत होत दार
1: आदरे लोके निसार
0: सफल जीवन सफल

देवदैत जक्षन उपजायु आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसिहि को हमारी।

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेत जुकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संक्रिय कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुज तब शरणी परे तिनके

दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा शवाय सके न कोई।

करो व्रत पारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दा जांदर हाथ उबारो, अमरे सबैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्यान, बहर करो कविता बिद नन्ना, किशन जथा मच चरित्र उचारो, चू को कबले हो सुधार।

कृत शास्त्र वेद सबाए बहु भेद गहे हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तो।

पुरका पयो जिसका सबसे आधार हो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उदारो, एह वस्त जी नह जाई नेत नेत राखुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया।

जैसा कर्ण करीम न जातो करता तिल पीड़े ज्यों कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुनै तेरे नाल खुदाई।

संत ना मिलियो वत्ते आपन पाणिया मौला खेल करे सब आपे एक कड्डे एक लहर वे आपे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर करत विहाणिया मेहर करे ता खसम त्याई

कर दिया हो शब्द द्वारा, यानी के जवान ते भी वाहिगुरु ही है, परमात्मा ही है, दिल च भी ओही है ते उन्हां दे ख्यालां च भी ओही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी एक अभ्यासी महापुरशां दे कुछ बोल सुनन दा समा मिलिया सी, वचन कर रहे सी, कुछ सीनियर अभ्यासी बैठे सी उन्हां कोल। वो कहंदे गुरमुखो अखीर दे विच तां एक ख्याल ही रह जांदा बस। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे अखीर च एक ख्याल ही रह जांदा, वो वाहिगुरु दा ही रहिंदा बस हर वेले। आखो सतनाम उसे ख्याल च टिके रहिंदा ते वो हर समय। कहंदे वो ख्याल जिवें अज सानू ख्याल आंदे आ, कदे कोई आ गया, कदे कोई आ गया, कदे कोई आ गया, कदे कोई, कदे टुट गया, कदे बन गया। कहंदे इदां दा ख्याल नहीं, बस इक वारी बन जाए मुड़ के टुटदा नहीं, उत्थे ही सुरत टिकी रहिंदी है। उहदे विच ख्याल दा भांडा ही बन जांदा इक तरह दा, ते उहदे च ही गुरमुख दा अंदरला टिकिया रहिंदा वाहिगुरु दे विच। महाराज जी कहिंदे भाई

रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। सतगुरु जी कृपा करन सानू सबना नू दरों करो नाम दी दात बख्शिश करन। इसे तरह आप संगतां दा जिहड़ा प्रेम है गुरु चरणा दे नाल बनिया रवे। आओ सारे हुण आपां अनंत सिंह जी दी बाणी नाल जुड़िए।

पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरता खिया करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला हमारी जस सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े सामालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसीसड़िया ज्यो हो वै साहिब से उमेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा तिथि वारी बाहुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के तेवेस राग तना सरी महला पहला गगन में थाल रवचा दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराई फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत फेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तो एक औ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इवचलत मोही समय जोत जोत है सोए तिस्ते चानन समय चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुपावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आहे प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है का डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधने जानिया तिने अंतर हम में कंडा है ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे जम काल सह से डंडा है हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जनम मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम अदार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संतैल की बेला एहा खाड़ चलो हर लाहा आग्ञा बसनु सुहेला औज कटै दिन सरै नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ एहो संसार बिकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पे आवै एहो रसे अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बहाजो हर गुरते मन ही बसेराओ निज घर महल पावो।

गै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कबहो न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन नेह जल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिंगासन प्रभु कै सिमरन अनहद जुनकार सुख प्रभ सिमरन कायंत न पार सिमरह से जन जन कव प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लंग बेदी उपाय हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीर चह कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना

दूध भर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पयाउ प्रसाउ सैन मोख्य पयाउ बैठ कौ दैन हो निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जेह प्रसाद धारु पर सुख बस है।

कछु न किन्ह लया, जित जित लाव तित लगे हरनाथ, नानक किन कह कछु नाथ। श्लोक अगम्य गाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिरमंता, साधन की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उज्जल हो, साध संग वल सगली खोज, साध के संग मिटे अवमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान।

संग महापनीत। साध संग कैस स्यों नहीं बैर, साधक संग न भीगा पैर, साधक संग ना ही को बंदा, साध संग जाने परमानंदा।

सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सक्षाय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता

सेवक दैद प्रगटाया निकी गिरी मह कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका साधन काटते आवता को राख दे कर हाथ मानस जतन करत बो पात इसके करत मिर्थे जात मारे राखे वरन कोई सर्व दिया का राखा सोए काहे सोच कर हेरे प्राणी जप नानक प्रभ अलाख बिडानी जप नानक प्रभ अलाख बिडानी बारंग काहे सोच कर हेरे प्राणी जप नानक प्रभ अलाख

में देख ससियर सूर नक्षत्र में बाणी प्रभु की सब को बोले आपे अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेले खेल बोल न पाई गुने बोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाम नानक दिन में हो विश्वास।

सगल समग्री जा का तना अपन जासे आप ही सुना अपन जान खेल बनाया गया कारी कीनी माया सब कह माधलेव तो रहे जो किज कहना सो आपे कहे।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर

आकाश ओढ़क ओढ़क पाल थके भेद कहन कवात सहस अठारह कहन कतेबा असुरिक तात लेखा वे ता लिखिया लेखे हुए विनाश नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे इति सुरतना पाइया नदियां अते बह पवे समुद्रा जाड़िया है समंद शाह सुल्तान गिरह सेती माल तन कीड़ी तुलना हो बनी जेत मनो ना विसर है अंतना सिफती कहन नंत अंतना करने देन नंत अंतना वेखण सुनन न अंत अंतना जापाय क्या मन मंत अंतना जापै कीता आकार अंतना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एव अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होहे वड्डा साहेब उचा थाओ उचे ऊपर उचा नाओ एवड उचा हो वह कोए तिस उचे कव जाने सोए जे बड़ आप जाने आप नानक नदरी गर्मी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए

आखे बरमे आखे इंद आखे गोपीता गोविंद आखे ईश्वरी आखे सिद्धि आखे केते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ता आख ना सके केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जेकू आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित वै सर्ब संभाले वजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परिस्यों कहियन किते गावण हारे गावे तहनु पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रथ नु पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जो तुद भाव रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतना आवन नानक्या विचारे सोई सोई सदा साचे साहिब साचा साची नाही है भी हो सी जाए ना जासी रचना जिन्नर चाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता आपना जेब तिसदी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो बाद शाहो शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान के करे विभूत किंधा काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत आई बंती सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश सा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको भीस। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका बार। कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दू जी बहु लखो है लखो मैं लख बीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। ए तराह पत पबड़िया

मनमाहे तथा भगत वसह के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर वेख नदर निहार तथा खंड मंडल वर भंड।

अलंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंग मनाने कलंगी स्वरूपे नमो राज राजेशुं परम रूपे नमो योग योगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेशुं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहंग नमो भूपूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नम संग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समसुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता बृहदर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेशंग ब्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदीय भेदीय नामंग अगामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोहर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है देश है भेस है पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी सुरभे नमो सर्वाने समस्ती निधाने नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग अगंजे नमास्तवंग अपंजे नमास्तवंग अकाले नमास्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वगृहसंग नमो सर्वरंगे तरभंगीय नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी

राजान भान आन भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकाल रंकाल कालान काल अनभुदंग अभा अभंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदि।

रिवाजा गनी मुखराज है नरक स्वरूप है त्रिभुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभ समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव अकाम है निर्वास रूपे अगाध है अनुपे ओंगाध रूपे ना सुरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभरगन त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है त्रिभुक्त स्वरूप है छिजय छूत है नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है न अनाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपण शांत त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरक रासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपेन्द्रपाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं शरीक मितोमिक सदैवं प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चिराग है के कामल करीम है के राज रहीम है के रोजी दहंद के राज रहिंद करीमल कमाल है के सुनल जमाल है गरीमल खराजा गरीबल निवाज है हरीफुल शिकन है रासिल फिकन है कलंक प्रणास है समसुल निवास है अगंजुल गरीम है रजाय रहीम है समसुल जुबा है के साहिब गिरा है के नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है के सर्वुल गवन है मेसुल रवन है तमामुल तमीज है समसुल अजीज है परंग परमीश है समसुल अधीस है अधेसुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है।

मन अनुमानत महामूड कशभेद ना जानत महादेव कहो कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा ना जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पुप्पा अंडज जेरज से तजगिनी उदबुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्यंभव अवरछा बेरी तुम करो सिख उभार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई कबार त्या है ताके काल निकट नह ऐ है अरशा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाए नह रहो ताके ताप तनक मैं हरहो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें

उबारी सर्ब ठाव मोह सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम ब्रज जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल विक सगल दे कुहरता दुष्ट दुखियन को शय करता।

स्पेशल मानता नहीं दिती, किसी नू रद्दिया नहीं। महाराज जी कहंदे साई कड़ी सुलखणी सहु नाल विहावे। हां भाई आया करो इन्हां दिनां च, इधर उधर सिख ना जान, जिवें रूटीना बनिया इन्हां दीआं, बस गुरु घर वल नूं उहदीआं बागां मोड़ देणियां ने। हुण चाहे संगरांद होवे, पुन्निया होवे, दसवीं होवे, गुरुद्वारे तां कीर्तन ही होणा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरुद्वारा साहिब तां बाणी ही पढ़ी जाणी है, चाहे अमृत वेला कह लो, चाहे चुपहरा कह लो, दुपहरा कह लो, संध्या वेला कह लो, जिहड़ा मर्जी कह लो, इत्थे तां बाणी ही पढ़ी जाणी है। ते जदों विच बाणी आ गई, महाराज जी दा नाम आ गया, सिमरन आ गया, फिर ओ समा भावें जिहड़ा मर्जी वेला है वो सफला हो जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। नास्तिकता दा एडा वड्डा दौर है अज दे समय च, सोशल मीडिया दे उत्ते ला लो भी इन्ना क नास्तिक पुणा फैलाया जा रहा है, कामरेडी विचारधारा फैलाई जा रही है, जिदा महाराज जी दी विचारधारा नाल कोई लेना देना नहीं, पर महाराज दे नां ते फैलाई जा रही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक कोई गुरमुख प्यारे वचन कर रहे सी चुपारा साहब ते, ए जी मानमत है, ते कहंदे बाणी महाराज जी दी पढ़नी, दाता बाबा दीप सिंह तो मंगनी आ, ए की तर्क होई? बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर 15 भगतां दी भी है, भट्टां दी भी है, पर कदे अरदास नाम लिया तुसी? अखंड पाठ साहब करदे हो, सहज पाठ करदे हो, कदे सारिआं दा नाम लिया? फजूल दीआं तरकां, फजूल दा ज्ञान घोटण लग पैणगे, जिहदा गुरु घर नाल संगत नाल कोई दूर नेड़े दा वास्ता नहीं। महाराज जी कहंदे भाई ऐसे ज्ञानी गुरु बन बन 500 आया करनगे डेली जेड़े

ਆਪ ਦੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ ਕੰਠ ਚ ਵਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੰਠ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਧੁਨੀ ਚ ਪਰਾ ਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਧੁਨੀ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਪ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁਖੀ ਉਤਰੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਇਨ ਲਾਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਉਹ ਲੱਥਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਿਣ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਿਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਤਰੇ। ਬਥੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ना बंदा जान बुझ के होवे कोई, क्योंकि कर्मां दा चक्कर है, इत्थे कर्मां दी करंसी चलदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आ दुनिया च जीण लई रुपये डॉलर पैसे चलदे है, पर इसे दुनिया च जीण लई कर्मां दी करंसी भी चलदी है। जिहदे वट्टे सुआस लै रहे आ, जिहदे वट्टे मित्र प्यारे मिलदे आ, जिहदे वट्टे संगत मिलदी है, किन्ना कुछ मिलदा, किन्ने सुख मिलदे आ सुते सिद्ध, वो सब कर्मां दे आसरे मिलदा। महाराज जी कहिंदे इन्ना करके रण चढ़दा रहिंदा बंदे दे सिर ते, करजा कर्मां दा, कुछ चंगे कर ले कुछ माड़े कर ले वगैरा वगैरा। महाराज जी कहिंदे जदों नाम दे दईदा फिर एक करजा उतर जांदा। भाई मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, जिहड़ा सब तों कीमती धन है वह वाहिगुरु का नाम है। भाई इस करके राम नाम जपया कर, वाहिगुरु वाहिगुरु करिया कर। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। महाराज जी कहिंदे मेरे सतगुरु ने यह गल पक्की कराई है मैनू कि नाम तो बिना यह जीवन बिरथा है। और पूरे गुरु ने कहा भी निश्चय करके जान लो, जे थोड़े जीवन च नाम नहीं आया, तुसी जीवन च नाम नहीं जपया, जिदन दुनिया तो जाओगे मोह माया दे विच फसे हुए इदां ही जाओगे। रहाओ महाराज बचन कर रहे हैं, बिन गुर मूड पए है मनमुख, ते मोह माया नित फाथा। बिना नाम तो गुरु तो मन दे पिछे लाके जेडे मनमुख फसे रहिंदे आ मोह माया च, कहिंदे उत्थे फसे खत्म हो जांदे। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। महाराज जी कहिंदे उन्हां ने कदे किसे साधु दे चरणा च नहीं गए, ना साधु दे चरणा दी सेवा कीती है, इस करके सारा जन्म व्यर्थ गवा लिया उन्होंने बिना किसी काम तो। हुण साध संगत जी जिथे बाणी च गुरु दे चरणा दी गल आंदी है, रब दे चरणा दी गल आंदी है, असी चरणा तो मुनकर होण लई प्रचारक लोग ये कहन लग पे आ बाणी रूप चरण। चलो गुरु दे कह दिने भी बाणी रूप चरण संगत नू भी किंतु परंतु नहीं हुंदा, जदके चरण चरण हुंदे है, चरण शरीर दे हुंदे है, शब्द दे नहीं। ते हुण महाराज जी कहिंदे जिन्हां ने साधुआं दे चरण नहीं सेवे, हुण साधुआं दा संतां दा ब्रह्म ज्ञानियां दा तां कई थावां ते नाम भी नहीं लैण दित्ता जांदा प्रचारकां नूं जिहड़े भावना वाले है। ते इत्थे महाराज जी कहिंदे उन्हां ने साधुआं दे चरण नहीं सेवे, सेवा नहीं कीती, जन्म व्यर्थ गवा लिया। इत्थे किस रूप चरण करोंगे, किस रूप च चरणा की व्याख्या करोंगे? बाणी रूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर जेड़े गुरु दे चरणा तो भजदे आ उन्हां नूं ये चरण हजम नहीं होने। इस करके चरणा का मतलब चरण नहीं हुंदा। जे महाराज जी ने कहा ना कि
महाराज जी दे चरण जेड़े है मेरे हिरदे च बसन। तो चरना दा मतलब चरण, गुरु की मूर्त, मन में ध्यान। गुरु की मूर्त दा मतलब गुरु दा स्वरूप, गुरु नानक देव जी दा स्वरूप, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा स्वरूप, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप। चरना दा मतलब चरण, इस करके अपना मन, अपना हिरदा, अपना दिल दिमाग इन्ना कच्चा ना करिए भी, क्योंकि असी 40% बाणी दी सच्ची व्याख्या तो भजन लग पे हाँ। किते किसे देवी देवते दा महाराज जी नाम लै देन, उत्थे भजन लग पईदा, उत्थे व्याख्या बदल लैंदे आ। जे कोई अर्थवाद आ जाए, अर्थवाद हुंदा, समा नहीं हुण इत्थे व्याख्या च विस्थार च जाइए भी, एक अकाल पुरख की उस्तत बाकी सब सरूपां दी, चाहे वह अवतार होण, पैगंबर होण, कुछ भी होवे, उह सब दा खंडन किया जांदा उत्थे। एक निरंकार स्वरूप दा उत्थे मंडन किया जांदा, मन्या जांदा, उहनूं अर्थवाद कहिंदे आ। ते जे किते अर्थवाद आ जाए उत्थे उहनूं निंदिया रूप दे विच प्रस्तुत कर देंदे आ, जदके जेड़ा गुरु यह कहिंदा निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगध करन, वह खुद किसे अवतार पैगंबर दी, किसे देवी देवते, किसे होर स्वरूप दी निंदा किवें कर सकदा। समझना पएगा भी की चीज है, यथार्थ है की चीज है वो जिहड़ी उत्थे गल कही है। जे रोवे राम निकाला पिया, सीता लखमन विछड़ गया, तो किस रूप च किया, किस भाव च किया। सो इन्नी सौड़ी मानसिकता ना लियाइए, सुन वेले भी और व्याख्या करन वेले भी, कि असी अपने गुरु दी कही गल तो ही परां नूं भजन लग पीए। वैसे तां इह तां चल बड़ी वड्डियां गल्लां ने, दास ने कई बार बेनती कीती है कि असी तां महाराज दा इक बाटे च अमृत छक के इक वचन नहीं मन सके अजे तक, कि महाराज जी ने कहा सी तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तो, माता साहिब कौर दियां धीआं हो, इक बाटे च अमृत छक के, अमृतधारी सिख, अमृतधारी सिखणी, जातां दा नाम लैके सिखां नाल नफरत करदे, उसे बाटे च अमृत छक। इन्नी क गल सतगुरु दी नहीं मन्नी, ते फिर जदो उत्थे नहीं मानदे ते बाणी तो भी परां नूं भजदे। कोशिश करो कम से कम जो महाराज जी ने वचन कीते है उन्हां तो ना भजिया जाए। भजोंगे आप ही फिर 84 वाले नूं जाओगे, महाराज जी का कख नहीं जाना। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाथा। महाराज जी कहिंदे जिन्हां ने साधुआं दे चरण कुट्टे है, सेवा कीती है, संगत च बैठे है, वचन सुने है, कमाए है, संगत कीती है, उन्हां दी साधु दी गल कीती है महाराज जी ने इत्थे। महाराज जी कहिंदे उन्हां दा जन्म सफल हो गया, सनाथा हो गए ने, वो नाथ वाले हो गए ने, भाव मालक दे हो गए ने, एवें नहीं तुरे फिरदे अनाथ जे। मोह कौ कीजै दास, दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। महाराज जी गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे हे महाराज, मैनू जिहड़े तेरे दास ने, जिहड़े अगे उहनां दे दास ने, जिहड़े अगे उहनां दे भी सेवक ने, महाराज उहनां दा सेवक बना लो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु च एडी निम्रता भी, गुरु कह रहे हैं भी
महाराज जेड़ा तेरा नाम जपदा, जेड़ा तेरे नाम जपण वाले दी सेवा करदा, ते अगे ओ सेवा करन वाले दी जेड़ा सेवा करदा मैनू ओदी सेवा दे दो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते असी तां माफ करना गुरु ग्रंथ साहिब दे वजीरां नूं नौकर समझदे आ। एक पासे कहा जांदा तुसी बाबा बुढ़ा साहिब जी दी थां ते हो, एक पासे जेड़े बंदे नूं जपजी साहिब नहीं पढ़ना हुंदा, जे किते कमेटी च कोई अहुदा मिल जाए ना ओए करके बुलाउणा शुरू कर दिंदा भाई साहिबां नूं। एडा वड्डा रुतबा होवे ते जिन्हों जपजी साहब खुद नहीं पढ़ना आता, जिन्हों खुद नू नहीं पता, कई कई मूल मंत्र नहीं करना आता हों। सो एक पासे गुरु अर्जन देव जी, एक पासे असी, नजर मार के देखो गल सच्ची है, चुभ जाती है कई बार, पहला ही खीमा मंग लें। पर हुण जे महाराज की हजूरी च बह के महाराज की गल ना की, सच्चे पातशाह दे सेवादारां दी गल ना कीती, फिर लानत है इहो जे प्रचारक होण ते भी। जे कोई अपने प्यो दी गोद च बह के अपने प्यो दी गल ही नहीं कर सकदा तो फिर कादा प्रचारक है हो। महाराज जी कहिंदे हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। महाराज असी अज्ञानी हाँ, अंधलिया राह नहीं सुझदा परमार्थ का, सानू असी किवें चलीए थोड़े मार्ग ते थोड़े पंथ ते, जिहड़ा रस्ता वाहिगुरु जी थोड़े वल नू जांदा उस मार्ग ते। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। महाराज जी असी अज्ञान करके अंधले हाँ, कृपा करो अपना पल्ला फड़ा दो, अपनी बाणी दा पल्ला लड़ फड़ा दो सानू। जन नानक चल है मिलंता। गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे महाराज असी थोड़े मार्ग ते चल पीए ते थानू मिल पईए। ओ मार्ग जिहड़ा थोड़े सीधा घर नूं जांदा है ओ मार्ग ते तोर लो सानू भी। अज्ञानियां नूं महाराज जी महाराज हो के ऐसे निम्रता दे बचन करदे आ। ते असी भी सतगुरु तो सिख लिए, अरदास करिए महाराज सानू नहीं कुछ आउंदा जांदा। महाराज असी एवें ही खाली भांडे खड़कदे रहने आ, हौमें दे भरे पए आ महाराज, बड़े औगण ने साडे च, कृपा कर लो महाराज जी सानू भी बख्श लो। सच्चे दिलों अरदास करिए महाराज जरूर सुनगे। इनिया कु बेनतियां प्रवान हुईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा। आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुर ता पाया सहज सेती।

दुख रोग संताप उतरे, संत साजन पहे सरसे, सुनते पुनीत कहते पवित्र, विनवंत नानक गुरु चरण लागे, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता।

सो होग जात सत संजम सच सुचीत नानक जोगी तर भवन मीत राम कली महला पहला खाट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द तुन अंतर जागी बाजै अनहद मेरा मन लीना गुर बचनी सचनाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाई रहा माया मोह बेबरज समाए सतगुर भेटै मेल मिलाए।

गलत गयम। एत उत माया देख पसारी मोह माया कह मगन पया करै बिकार बिथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पयम। हो मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेबो रोग गया सुख संपत को आवत देख सागत मन अभमान पया। जिसका एहो तन धन सो पिर लेवै अंसर अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किछ साथ न चल जो दिस सब तिसह मयम। आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनाव है भय सागर असराल पया देख कुटम माया ग्रह मंदर सागत जंजाल पराल पयम। जा आए ता तने पठाए चाले तने बलाए लया जो कुछ करना सो कर रहया बख्शन हार है बख्श लया जिन ए चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोज भया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरन पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते ब्रकत भया। आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखणी महला पहला। जात सत संजम साच दरड़ाया साच शब्द रसलीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति न रहाओ। रह गगन पुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना जात सत बंद कुपीन भर पुर लीना जेबा रंग रसीना। सत बंद कुपीन भर पुर लीना जेबा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच रचे किरत विचार पतीना। एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई। जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक परगासिया तेरे पावन जोत दिखाई। सच्चा तख्त सच महली बैठे निरपौ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी घड़ घड़ किंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूट है सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी घर छाया धरन गगन कल तहारी। गुरमुख कीती शब्द उधारी संत हराओ ममता मार हो मैं सो कै तर पवन जोत तुमारी मनसा मार मन मह राखै सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद बाजै घड़ घड़ जोत तुमारी पर पंच बेन तही मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एन सदीपक निर्मल जोत अपारी। राव सस लौके हो तन किंगरी वाजै शब्द नरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी। काया नगरी मह काया नगरी हुमन राजा पंच बसै बिचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी। काल बिकाल कहे कह बपरे जीव तुमुआ मन मारी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे करता कारी काया सोध तरह भवदाव सागर आदम तत् विचारी गुरसेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी। आपे मेल लहे गुरदाता होमै तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथा बरता एहा भगत नरारी। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीना हृदय एक मरारी मनुआ अस्त्र शब्दे राता एहा करनी सारी। भेद बाद ना पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कुमावै औदू जात सत शब्द विचारी शब्द मरै मन मारे औदू जोग जुगत विचारी। माया मोह भव जल है अवधू शब्द तरै कुल तारी शब्द सूर जुगचारे औदू बाणी भगत विचारी। एह मन माया मोहया औदू निकसै शब्द विचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरन तुम्हारी। एह मन माया मोहया औदू निकसै शब्द विचारी आपे बख्श मले आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरन तुम्हारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही क्यों वरणी किव जाना। नानक आखन सबको आख एक दू एक सियाणा। वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जाका होवै। नानक जे को आपू जाने अगे गया ना सोहै। पाताला पाताल लाखे आगासा आगा सोड़ कोड़ कपाल थके वेद कह निकवात। सहस उठारे कनक तेबा सुलू एक धात। लेखा हुए ता लिखी आए लेखा हुए बनास। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सलाही सलाहे ती सुरत ना पाईया। नदिया तेवा पवै समुंद न जानी है। समुंद सा सुल्तान ग्रह सेती माल धन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। अंत ना सिवती कै नंत अंत ना करण दे नंत। अंत ना वेखण सुन नंत अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोय बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे उपर ऊंचा ना विवड़ी ऊंचा होवै कोय। तिस ऊंचे को जाने सोए तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात।

खाणी चार है गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे सही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीहो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिवत

रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली त्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील नादना हत जुग जुगे को वेश भुगत ज्ञान दया भंडारन कड़कड़ वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध।

जुग जुग एको वेसा। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवह चलावै, जिव होवै फरमान। ओह वेखै उन्ना नदर न आवे, बहुता एहो वडान। आदे तिसे आदेश, आद नील नादन हत, जुग जुगे को वेस। आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार, नानक सचे की साची कार। आदे तिसे आदेश, आद नील नादन हत, जुग जुगे को वेस।

दुख उत भूखे खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे मे सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नायरा साचे नाम की तिलवडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाहे वड्डा ना होवे घाट न जाए ना हो मरे ना होवे सोग दिंदा रहे न चूके भोगा गुण होर नाही कोए ना कोआ ना कोए जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम वसारे ते कम जात नानक नावे बात सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुर देव मुख राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई अर कीरत मरी रह रास रहा हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतास मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर सरना संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे।

आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा। जरन पिता लोग सुत बनता कोय न किसकी धरिया, सिर सिर जग संभाहे ठाकर काहे मन भौ करिया। ऊडे ऊडे आवे सह को सा,

तू सबनी ध्याया जिस नू कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदया विछोड़या मिलाया तू दरिया सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सदी आख बखाण है

करे सगल बुन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनाहता शब्द वाज अंत भेरी राव। सहस तब नैन नानक नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहस तब गांधे विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मुकरांद लोभित मनवंदन मुयाई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग होए। जाते तेरे नाए वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाए। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाए। कर साधु अंजलि पुन वडाए कर।

जिथे लिखा मंगिए तिथे होए सचा निशान रहाउ। जिथे मिले वडियाईया साध खुशियां साध चाओ, तिन मुख टिके निकलाए जिन मन सचा नाओ। कर मिले ता पाइये नाही गली वाओ दुवाओ, एक आवै एक जाए उठ रखिए नाव सलार। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार, अगे गया जानिए विरनावे वैकार। वेकार भय तेरे डर अगला खप खप छिजै दे, नाम जिन्ना सुल्तान खान हुंदे डिठे खे। नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने, श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मनिया सुनिया सा लोने, खड़ तुरसी मुख बोलना मार।

मिलै अंक से लड़ियां मिल कै करें कहानियां समरथ कंत किया साचे साहिब।

एको सोए। जिसके जी पुराण है मन वसै सुख होए, जग सुपना बाजी बनी खिन मय खेल खिलाए। संजोगी मलेक सेवा जोगी उठ जाए, जो तिस भाणा सोथी अवरना करना जाए। गुरमुख वस्त वसाइए सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरु पूरे साबास। जिन्नी सच वणजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला, तात मिले फुन तात को, सिबती सिबत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जापे के पाए। भाई रे संत जना की रे ना, संत सभा गुर पाइये मुगत पदार्थ तेन रा। ऊचो थान सुहावना उपर मैल अपार, मुरार सच करनी दे पाइए दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, त्रिभुत कर्म कमाइए आसियां देसा होए। क्यों गुरबिन त्रुटि छुट सी सज मिलिया सुख होए, निज घर मैल पछाणिए नदर।

हर हर नाम जपै राधे विच अग्नि हर जाप जिव्या बाहर जन पया मुख लागा सरस पिता मात थिव्या।

रेत अनित दासा न पावै जियो, दासा न पावै बिंदर सावै, कखन तीर्ज क्यों करै। नाम बिहुना तन मन ही न जलव, बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण दारे, गुण साध संग मिल गावै। नानक स्वामी धारन गुरह, मन तन अंक समावै। दखना सुहंदड़ो हवठाए, कोई न दिसो डूजड़ो। खुलड़े कपाट नानी सतगुर भेटते छंत, तेरे बचन रूप अपार। संतन आधार बाणी बिचारिय, जियो सिमर सास ग्रास पूर्ण विश्वास। क्यों मनो बिसारिय जियो, क्यों मनो बिसारिय निमख ने टारिय। गुणवंत प्राण हमारे, मन बांच दफल देत है। स्वामी जी की वृथा सारे, अनाथ के नाथ सर्व कैसा थे। जब जुए जन्म न हारिये, नानकी बेनंती प्रभ पै। कृपा कर पव जल तारिये।

माल छंत सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवत दियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हरे अमृत पीवत दियो अमृत हर पीवत सदा थिर थीवत बिखे बन फीका जानिया पै कृपाल गोपाल प्रमेर साध संगत निद मानिया सर्वस सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण अदारा जप जप नानक जीवत डखना जो तो किने अपने तिना को मिलियो आपे ही आप मोहियो जस नानक आप सुनियो छंत प्रेम ठगोरी पाए रजाए गोविंद मन मोहिया प्रेम ठगोरी पाए रजाए गोविंद मन मोहिया जियो संता के प्रसाद अगाध कंठ लग सोहिया जियो हर कंठ लाग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस पाए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया शुभ जाया बड़ न माया होया कर गलीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल किम न कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान दो छंत कहते पवित्र सुनते सब तन लिखंते कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्ह ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गली ने हर जसो दिने जो न तावे न मरी सतगुरु दयाल कृपाल पेट तरे काम क्रोध लो मारिया कथन जाया कथ स्वामी सदके जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणदारा एक ओंकार सत नाम गुरु प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए हर जी सब प्रतिपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई तबने बिना कोए दमो माया चित लाइन दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया रे अंत सखाई होए मैं हर बिन अवरना कोए हर गुर सुनाई पाई बन जा रहा मित्र अवड़ भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना बिन पाया हर किन न पाया नाओ हां विच अमृत विच होमे कर्म कमाम दे जो वेसवा पूत ने नाओ

आकार जेव सच्चे मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे सदा सच स्वभाव अपार महला तीजा होर बिरा सब तत् जबल साहेब प्रीत न होए ए मन माया मोहया वेखण सुन न होए सौ देखे बिन प्रीत न उपजय अंधा क्या करे नाने दिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हरि को

प्रकारे हर तिसनो सलाहे जे तुद रखे बाहर कार हर जिसनो होए दयाल दयाल जिसनो होए दयाल सो हर जप पाओ बिखमतार श्लोक महला पहला दाते साहिब संधिया क्या चले ते नाल इक जगन दे ना लहन इक ना सुत्यां दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधिका सबर तुस्ता में लायका दीदार पूरे पायसा था नाई खायका पौड़ी सव्या पे तुद पाए के आप कर लाई तुद आपे वेख विकसदा अपनी वड्याई हर तु दो बार किछ नाई तू सच्चा साई तू आपे आप वर्तदा सबनी ही थाई हर तिसे त्याव संत जन जो लय छडाई श्लोक महला पहला

सप्त सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सब ना वे तुम वर्तदा हर सब ना पाणा सप्त दैत्या में जे जंत हर सारंग पाणा जो गुरु मुखार राधे तिन कुरबाणा तू आपे आप वर्तदा करचो जबिंडाणा श्रोक महला तीजा कलव मसाजनी क्या सदा ये हृदय ही लेख ले हो सदा साहिब के रंग रह कब न तू टस ने हो कलव मसाजनी जाय सी लिखिया पिना ले जाए नानक सो प्रीत ना जाय सी जो तुर छोड़ सच पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल न चले वेख क्यों वे उपाय सतगुरु दृढ़ सदृढ़ आया सच रहो लिवलाय नानक सब दिशा छ कर्मी पल्ले पाए पौड़ी हरे अंदर बार एक तू तू जाने पेत जो किसे सो हर जान दा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमामदा धर्मी विग सेत

प्रिया मनोखस दाकालिया बार चिटुया रि सकरत नाड़िया जो सेवे दर खड़िया नाल खसमे रचिया माने सोखर लिया होंदे तान नेतानिया रह निमानिया नाने जन्म सकारता जय तिन कै संग मिला पौड़ी।

विचगुलाले तुम आपे मुक्त कराएं दायक निमक कड़ी कर ख्याल हर तो दो बार के छ नहीं गुर शब्दी वेखने हाल श्लोक महला तीजा हुक्म न जाने बता रोवे अंतर धोखा तो नींद ना सोवे जे तन खसम चला रजा ही दर कर सोभा मैल बुलाई नानक करमिए मत पाई गुर प्रसाद सच समाई महला तीजा मनमुख नाम वेहुणिया रंग सुमे देख ना भुल इसदा रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पाचम हुए मूर्ख अंद गया गवार बेचा अंदर कीट से पे पचे वारो वार नानक नाम रत से रंगुले गुर कैसे सुभाय भगती रंग न उतरे सज रह सुमाय पौड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाई साब तुरे आपे सुभाहे एक वाल छल करके खाव दे मोहे कूड़ को सत दिन ढाया तुरे आपे पावे सुख रह

कूड़ को सत कमाए गुरप्रसाद इमरजने अरसे तिले वलाए नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी हर के संसार सुनो जन पाई हर सतगुरु की एक साखे जस्तुरम भाग होवे मुख मस्तक तन जन लै हृदय राखी हरि अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरु बचनी सहज चाखे तह पया प्रकाश मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रैण के राखी आदिष्ट गोचर लख निरंजन सो देख्या गुरमुखी आखी श्लोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिरलेखा लाए विचों आप गवाए के रहन सच लिव लाए सतगुर जनीना सेवियो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस भावे सो करे कहना किसु ना जाए।

आए जापता संयम पाना सदगुरु का कर्म फल पाए नानक सेवा सुरत कमावणी जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी।

लाख चौरासी फेर पे अमरदम होए खुआर सदगुरु के सेवा सो करे जैसनो आप कराए सए सदगुरु नाम निदान है क्रम पर आपत होए सत रत गुरु सौदा

आहे, सरगुरजने त्याया स्वतृत्याग आहे, सगुरजने त्याया तन जाम डर नाहे, जन को हुआ कृपाल हर से सदगुरु पैरि पाए, तिने आते उथे मगो जाए हर दरगा पैंद जाए, श्रोक महला दूजा, जो सिर साई नानी में सो सिर की जय डार, नान तस पिंजर में बिरवा नहीं, सो पिंजरला जार महला पंजवा मुडो भुले मो नानका फिर जन्म मुयास, कस्तूरी के पोरडे कंधे डूम प्यास, नान सो ऐसा हर नाम चाहिए मन मेरे, जो सबने उपरकम चल लाए

हार नाम यज्ञ आन निवाय श्लोक महल्ला तेजा वेश करे करूप कलखणी मन घोटे कुड़े आर फिर के पाने ना चल हुकुम करेगा बार गुर के पाने जो चल सब दुख निवारण हार लिखे आ मिट न सकी है जो तुर लिखिया करता रे

प्राकर छोड़िया हुक्म सवार नहार गुरु प्रसाद जन भूजिया तन पाया मुख द्वार मान मुख हुक्म न जाने तन मार जम जंधार गुरमुख जन आराध्या तन तरिया पौजल संसार सब अगुण गुणी मिटाया गुरु आपे बख्शन हार पौड़ी हर की भगतां प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचार दा काड़ा दसा क्योंकि दे जान नाही अतरम मारदा सच्चा साहिब सच ने पापी नर हर दस लायो भगत कर जोड़ हर भगत जान तार दस रुख महला तीजा अपने प्रीत मिल रहा अंतर खर तार चलाही सो प्रभ सदा सदा गुर के हेत प्यार नानक जस नजर करे तस मिल साई सुहागण नार महला तीजा गुरसेवा ते हर पाई जा को नजर करे मानस ते देवते किए त्याया नाम हरे ओ मैं मार मिलान गुर कै सब तरे नानी सत संभाय नर अपनी कृपा करे पौड़ी हरे अपने भगत कराए बड़े आई वे खालियन अपने आप करे प्रतीत आपे सेव खालियन

सदगुरु सच विशाखिय संत संगन दान अमृत चाखिय पैपंजन मेहरबान दास की राखिय नानक हर गुण गाय अलख ब्रह्म लाखिय श्रोक महला तेजा जियो पिंड सब तिस का सबसे दे आधार नानक गुरमत से भी सदा सदा दातार बलियारी तिनको जिन त्याया निरंकार उन्ना के मुख सद उदले उन्नान सब जब्त करे नमस्कार सगुरु मिले उल्टी पै नमस्कार चो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर निज घर वसे निज थाए अनाथ नि सद वजदे उन्मन लिवलाए

निर्देवोदान दयाल प्रवर नाम त्याया हरदातेर नाम जपाया नानी पहनाया स्वदेख अंकार सदगुरु प्रसाद श्रीरा कबीर जी का एक सुहान कै घर गावना जननी जानत सुध बड़ा होता है इतना गुना जान के दिन दिन अब्द कटता है मुर मुर कार्य अधिक लाड तर पे कते जमराव हसा है।

मरना रमैया जप प्राणी अनहत जीवन बानी अनवत पव सागल तरना जात पावे तन लागे हवा जात पावे तन लागे पाओ परम पलावा विचो जाए उपदेश ज्ञान मत जागे गुरु पर साजंत्र लागे हित संगत नाही मरना हुकम छण तक समय मिलना रहो दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण पाओ विसर गया कुटुंब देख बिसै कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा दुड़ायो दुड़ायो है जम तृणा दिन आगड़े में रहना जाई कोई कोई साजन आए कह मिल मेरे बिठला लाहड़ी बलाई मिल मेरे रमैया मले चढ़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मुठा चेत स नाय जन्म गवायो आलसिया बेखम कोर पंथ चालना प्राणी साब राव सत न प्रवेश माया मोता जो बिसर गया जाता जिले संसारंग आज मेरे मन प्रकट पिया है पेखिया ले धर्म राव तय कर बेखेदा कह

जाकेत सुनाद देव लागे रहो। पाठी गगन सिंह आर चुंगया कनक कलस एक पाया, तेस नाद लेव लागे रहो। श्री राग भगत कबीर जी का चरज एक सुनोरे पंडिया बिच कहना जाई, सोर नर गण गंधर्व जन मोहे त्रिपवन में खुले लाई राजा रामनद किंगुरी बाजा। जहाँ के दिस नाद लिव लागे राव पाठी गगन सिंगया अर चुंगया कनक कलस इक पाया, तिसमें तार चुहै अत निर्मल रस में रसन चुआया। एक जो बातानु बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन में को जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो के पैरियां के कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडल जब या चतुर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मद ना अहनस एक अज्ञान सोनागा। ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर हर मनो बिसारिया। फिर पछता महंगा मुड़िया तू कवन कुमत भ्रम लागा, चेत राम ना ही जमपुर जाएगा। जन बिचरे अनुराधा राहो बार विनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोह व्यापे रास मिस मेद अमृत बिख चाखे तो पंच प्रगट संतापे। जब तब संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या, उछल्या काम काल मत लागे तो आन सकत गल बांध्या। तरण तेज पर तरिया मुख जो है सर परस ना पछाण्या, उनमत काम महाबिख भूले पाप पुन ना पछाण्या। सुत संपत देख एहो मन गर्भया, राम हृदय तै खोया। अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म बिगोया। पुंडर केस

बचताना निकुटे दे देख धुन उपजय मान करत नहीं बूझे लालच कर जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझ जाए था।

पुनर्वैर अकाल मूर्त अजु निश भंगुर प्रसाद हर नाम हर मन पाया वड भागे हर नाम चाया गुरपुरे हर नाम निध पाई वड़ पा

तेर स्वागवर अगम अगोचर जनाने प्रेम सदारी दियो माजमल्ला पंजमा खोज खोज दर्शन चाहे पात पात बन बने अवगाए निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे दियो खाट सास विच रत मुख ज्ञान पूजा दृग तीर्थ सुनाना निवली करम आसन चौरासी में शांत न आवे दियो अनेक बरख किए जाप ताप गवन किया धरती परमाता एक खन हृदय शांत न आवे जोगे बोड़ बोड़ उठता आवे जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तेरे पाया प्रभु नसी बसिया कट पितर हर मंगल नानक गावे जियो माध महला पंजमा पार ब्रह्मा परंपर देवा अगम गोचर कपे वा दीन दया गोपाल गोविंदा हर त्याव गुरमुख गाति दियो गुरमुख मधुसूदन सारे गुरमुख संगी कृष्ण मरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइये होर तकित न पाति दियो निराहारि केशव निर्वैर कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत काति दियो अमोघ दर्शन बेअंत अबारा

हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सद दिना जीव माज महला पंचमा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाय दुख बिडार नारिया अवसाद चाख सगले देखे मन हर रस सबते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निदान तसे परावे जे शब्द गुरु मन उठा जियो जिन हर रस पाए तृप्त सो तृप्त गाना

पामणिया गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय बिठाया आप आए नानक नाम मिले नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा एका जो जोत है सरीरा शब्द देखाए सतगुर पूरा आपे फरकी तोन घट अंतर आपे बंत बनावणिया हों वारी जियो वारी सच्चे के गुण गावणिया बाज गुरु को सह न पाए गुरमुख सह समावणिया राह तू आपे सोहे आपे जग मोहे तू आपे नदी जगत परोवे तू आपे दुख सुख देवे तू आपे दुख सुख देवे कते गुरमुख हर देखावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन बसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुना मनिया आपे करता आपे पुगता बंदा तोड़े सदा है मुक्ता।

तो पाया आपे गुण दाता गुण गावे आपे आख सुना मनिया आपे करे कराए आपे आपे थापो थापे आपे तू ते बार कछु ना होवे तू आपे कारे लामनिया आपे मारे आप जिवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज सुमामनिया आपे उच्चा उच्चो हुई जस आप वेखाले सु वेखे कोई नानक नाम वसे कटे अंतर आपे वेख वेखलनिया माज महला तेजा मेरा प्रपर पूरा सब थाई गुर प्रसाद कह मैं पाई सदा सरेवी सदा सरेवी एक मन त्याई गुरमुख सच समामनिया हो वारी जियो वारी जग जीवन मन वसामनिया हर जग जीवन निरपो दाता गुरमत सहज सुमामनिया रहाओ करम धरती तौल पतला करम धरती तौल पतला कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला सदा ना

काया अंदर पाप पाप पुन दोहे पाई दोहे मिल के सिष्टो पाई दोवे मार जाय इकत कर आवे गुरमत सहज सो मामनिया कर ही मैं दूजे पाए अनेरा चानन होवे छड़े होमे मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंद नाम त्यामनिया अंतरजोत प्रगट पर सारा अंतरजोत प्रगट पर सारा गुर साखी मिटिया अंधियारा कमल बेगासा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलावनिया अंदर महल रतनी परे पंडारा गुरमुख पावे नाम पारा गुरमुख वंजे सदा पवो पारी सा लाह नाम साध पामनिया आपे वथ रखे आपे दे गुरमुख वंजे के नानक जिस नजर करे सो पाए कर कृपा मन वसामनिया माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर के शब्द पौ दूजा।

तै गुण पड़े हर एक न जाने बिन बूझे दुख पावनिया जा तिस पावे ताय आप मलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए नानक नावे नाम नानक नावे की सच्ची वड्याई नामो मन सुख पावनिया माज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत पछाणे सो पंडित।

रतन पदार्थ करते पाया, पूरे सतगुरु शब्द सुनाया, गुर शब्द गुर प्रसाद मिटिया, अंधियारा घट चानन आप पछाननिया, आप पाए ते आपे वेखे, सतगुर सेवे सो जन लेखे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुर कृपा ते पावनिया, माज महला तीजा।

जिन पाया भरावे अपना आए तिस अगना एक खिण में एक खिण तिस बैं जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महल पूरिया रव्या बिच बना सो प्रभ चेतना आवि कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन को।

मन पवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से कहे तन आपा लिया जे मिले विचर क्यों रवाना।

संत सहाय प्रेम के हो तिनके लागा पाए बिन प्रभु क्यों सुख पाए दूजी नाही जाए।

से बिछड़ कथे न जाए, प्रभवें दूजा को नहीं, प्रभवें दूजा को नहीं, नानक हसर नाए। असो सुखी बसंदिया जिन्ना माया हर राय।

पौड़ी तो करता पुरख गम आप से तो पति रंग प्रंग उपाजा बहु बहु बहु बहु वेद पति तू जाने जन पाये सबके तुमाती एक आवे एक जावे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख बधाती।

ठग ठगया ठग आये जाये तान मह तृष्णा याग शब्द बजाये श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फल फुल फल ज्ञान रस रस्या हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान।

दान नानक मंगे दान जो जो तुद पाया श्लोक महला दूजा देखया आख बजाया सिप्ति सच समयो तिन कौ क्या उपदेसया जन गुर नानक देहो महला पहला आप बजाए सोई बुझे जिस आप

अकाल मूर्त अजूनि सैभं गुर प्रसाद पाओ मुज भारा वड्डा तोल मत मन मत होले बोले बोल सिर तर चलिए साही सहिए भार नदी करमी गुर बिचार पै बिन कोई न

तीर्थ जाए रत्न पदार्थ कथे माहे पढ़ पढ़ पंडित बाद बखान पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने पीतर बुद्धि वस्त न जाने ओना मुआ मेरी मोहे बुलाए ओना मुआ जो रह समाए कौ कौ नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता

नजर पई कर करते जानिया जत सत तीर्थ मंजन नाम अदक बेथार करो किस काम नार नारायण अंतर जाम आन मनो तो पार कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नानक गुरमत सहज समाओ गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरन दिखाए मरन रहन रस अमृत पाए गर्भ निवार गगन पाए मरन लिखाए आए नहीं रहना हर जाप रहो हर सरना रहाओ सतगुर में ता दुबदा भागे कमल बिगास मन हर प्रभ लागे जीत मरे महा रस आगे सतगुर मिले सच संजम सूचा।

आगे करी पुकार जना श्री राम नाम उचर बना आगे जम दहल बिखमकना रहो उसार मढोली रख रख दोबारा पीतर बैठी सात नाय अमत केल करे नित कामना अवर लुटे सो पंच जना टाहे मनोली लुटिया दोहरी उसा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संग पड़िया जम डंडा गल संगल पड़िया

मने को साहेब भाई रे तेरे तीन गुना संसार समावे अलखना लखना जाई रे रहाओ सकल खंड माया तन मिठी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सुजसनाई लज टुक्स मूसा पाई रे मनम करे मनम कहे तेता दुख